माता पिता बंधु सख सब ही राम नाम। भक्त जन र जीवन धन एक राम नाम। भक्त जन र जीवन धन।